0: 99 सतबीर औजला गीत MP3
1: सारा शहर हमें लॉइन के नाम से जानता है मोना डार्लिंग।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Ayushman Khurana and you're listening to Radio Hanji।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji, stay tuned.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर? हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी। I am the advisor.
3: हाँ जी हाँ जी,

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਦੀਨ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी
2: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME Advisor.
5: You are listening.
6: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji, Radio Haji.
5: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
6: Radio Haji.
5: Stay tuned.

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

इमिग्रेशन का मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ IME एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा या स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी IME एडवाइजर

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
0: हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186-189-190-482-491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: दिस स्टेशन इज नाउ द अल्टीमेट पावर इन द यूनिवर्स।
4: रेडियो हांजी 16748।

इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहूं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की

एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: हाय दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।
1: मेरी हाय हाय गोली मारे अखियों से हाय हाय गोली।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिलवाले नहीं होते।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

स्टूडेंट वीजा तो PR तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो IME एडवाइजर कॉल 02906316 18 हुन पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी

0: Television is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: अच्छा सुनना, एक गल दस, सच्ची सच्ची दसेंगा।

स्विंग ग्रोवर, स्विंग ग्रोवर, हाँ जी हाँ जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674, सुनते रहो सुनते रहो, हाँ जी AM।

0: This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए, लेकिन हंसते रहिए.
1: हाँ जी, मैं तो अड़ा पड़ा गैरी संधू, सोन ड्राइवर था मुंडा, पेंट रोड़का गला, वो समय दी कल कल लगा, जो तो मैं कनाडा में पहली बार गया, मेरा फ्रेंड मनु कैक्टस क्लब ले गया, उसे मेरे वर्ग का देसी, बलैतन बीबी तो स्नैपचैट आईडी मांगता सी, ते मैं गाना ले

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 1674.

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਹਰੀ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਬੂਟੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਚਾਦਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਮੋਰੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: रेडियो हाँ जी 1674
1: आजा प्यार की हो डील।
2: डील बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील।

आखण जोर चुपै नह जोर, जोर ना मंगण देन ना जोर, जोर ना जीवन मरना जोर, जोर ना राज माल मन सोर।

कर्मखंड की बाणी जोर, तिथे होर ना कोई होर, तिथे जोत महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: खेती आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Very Be Toyota, the smart choice.

0: Namaskar, and once again a very warm welcome to Awakening with Brahma Kumaris. इतना लंबा हमने सफर तय कर लिया, अब ऐसा लगता है कि जैसे एक परिवार का हिस्सा बन चुके हैं और कितने सारे वो रहस्य सामने आते जा रहे हैं जो रहस्य लगते थे लेकिन सच कितना सहज है। अपनी पहचान हुई, उस परमात्मा की पहचान और फिर जिस समय में हम रह रहे हैं उस समय की पहचान। लेकिन अभी भी कुछ और बातें हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हैं, जिनका रहस्य जो है उन रहस्य से पर्दा हटना जरूरी है। तो चलिए आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और हर बार की तरह इस पूरे सफर में हमें जितने भी रहस्य हैं उनसे दूर ले जाने के लिए, पर्दा हटाने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: आपने बात की थी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम सोल लेवल पर या ट्रांसफॉर्मेशन पूरा होगा। उससे पहले एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं कि जिस समय में हम रह रहे हैं कहां से होते हुए आए हैं।
1: हमने सबसे पहले यही देखा कि टाइम मूव्स इन अ साइक्लिक मैनर, यू नो, टिल नाउ देयर वाज अ लिटिल कंफ्यूजन अबाउट ये सृष्टि कब शुरू हुई, अबाउट द क्रिएशन, और जहां क्रिएशन की बात आती तो फिर अब ये बात आने लग गई कि डिस्ट्रक्शन कब होने वाली है इसकी, यू नो, बिकॉज जो चीज क्रिएट होगी तो फिर वो एक ना एक दिन डिस्ट्रॉय भी होगी। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रक्शन, यू नो, एवरीवेयर, एंड उसकी वजह से एक भय, यू नो, एक इनसिक्योरिटी कि आखिर आने वाला समय कहाँ हमें लेकर जा रहा है। और अब तो पर्यावरण की वजह से कहीं ना कहीं, और न्यूक्लियर वेपन्स जो सारे रेडी हैं और जो बहुत सारे प्रोफेसीज हो चुकी हैं, यू नो, बहुत सारी प्रेडिक्शंस की गई है।
0: नाथ जेमस की अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो लोग तो इतने डरे हुए हैं कि अब होने वाला है।
1: यस, सो एवरीवन इज लुकिंग एट द ईयर नाउ, नाउ इट्स बिकम ईयर स्पेसिफिक, यू नो, पहले था कि ये हो सकता है या ये होगा शायद, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि किस वर्ष में, एंड वो वर्ष भी जो आया है वो बहुत नजदीक लग रहा है कि 2010 2011। तो नाउ वी हैव रियलाइज दैट इट इज within our lifetime. पहले लग रहा था कि हाँ सृष्टि को कुछ होने वाला है,
0: चलो जब होगा तब देखा जाएगा,
1: जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अब ये लगता है कि अपने ही इस लाइफ टाइम में होगा। तो समवेयर, इवन दो आई डोंट नो हाउ मच वी पे अटेंशन टू इट, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच बीच में वो डाउट आ जाता है, बट फिर हम उसको फिर इग्नोर कर देते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और ये लगता है कि जब होगा तो सारी दुनिया पर होगा। अभी तक हम अगर सुन भी रहे थे इन्फॉर्मेशन को तो हम एक नेगेटिव नोट पर सुन रहे थे कि हाँ ये सब होने वाला है, हाय क्या होगा, दुनिया का क्या होगा। बट नाउ व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज साइक्लिक, तो फिर रात को डर नहीं लगता। हाँ होता है कि अंधेरा है तो कहीं ना कहीं हम ठोकर खाते हैं, लेकिन हम निराश होकर नहीं बैठ जाते कि दिस इज द एंड, हमें क्योंकि ये पता होता है कि रात के बाद दिन सुबह होनी है।
0: इनफैक्ट एक और बात यहाँ जी जोड़ूंगी कि रात में भी रोशनी करने की टेक्निक हमने सीख ली।
1: यस, एब्सोल्युटली, ताकि वो रात भी उतनी तकलीफ नहीं देगी अगर हमें उसमें भी अपने आप को प्रिपेयर करना आ जाए। एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। सो दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन इज नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, बिकॉज वी नो कि नाउ इट्स ओनली अ साइन दैट द मॉर्निंग इज हियर। बस एक थोड़ा सा पीरियड जैसा बीच में है, लेकिन वॉट अबाउट दैट ब्यूटिफुल मॉर्निंग व्हिच इज टू कम। जब हमें ये समझ में आया कि टाइम इज साइक्लिक, वी अंडरस्टूड दैट सोल, मैटर एंड गॉड इज एनर्जी। तो एनर्जी पे फिर कुछ लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं, एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉ था कि इट कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. तो energy is constant. तो इसलिए जितनी number of souls हैं वो fixed है, उसमें ना कोई addition है ना कोई subtraction है. And the other is energy moves from an ordered state. वो पहले एक ordered state में है, जब वो movement या action में आती है तो धीरे धीरे धीरे धीरे वो ordered state से chaotic stage में आ जाती है, and then another external source of energy intervenes. जो उस क्लोज्ड सिस्टम का हिस्सा नहीं है वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इंटरवीन करती है, एंड दैट रीचार्जेस और रीकिंडल्स दिस सिस्टम ऑफ एनर्जी, एंड इट मूव्स फ्रॉम अ कैओटिक स्टेज अगेन टू एन ऑर्डर्ड स्टेज। तो द सोल एनर्जी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे थी, धीरे धीरे धीरे कर्म में आते आते आते इट मूव्स टू इट्स लोएस्ट स्टेज, फिनिश नहीं होती, लेकिन वो लोएस्ट स्टेज वो है जब वो हायर पावर को, जिसको हम परमात्मा, निराकार, शिव बाबा कहते हैं, ऑल माइटी अथॉरिटी, ही इंटरवीन्स इन टू दिस क्लोज सिस्टम एंड द सोल गेट्स चार्ज्ड अगेन एंड सो दिस साइकिल विल गो ऑन. कि द सोल विल बी इट्स हायर स्टेज, मूव, कम टू इट्स लोएस्ट स्टेज, अगेन गो बैक टू इट्स हाईएस्ट स्टेज. तो हमें समझ में आता है कि थिंग्स आर मूविंग इन अ साइकिल. तो जैसे दिन का साइकिल, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सिमिलरली ऑन अ बिगर लेवल नाउ, सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, या हम कहें गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज एंड देन आयरन एज. तो अब आयरन एज में हम आकर पहुंचे. कलयुग ये शब्द तो बच्चे बच्चे के मुंह पर है, कलयुग है. आजकल हम कहते हैं घोर कलयुग है. जैसे आपने कहा कि अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया है और घोर कलयुग है, इसलिए हम धक्के खा रहे हैं, ठोकर मार रहे हैं, दुख अशांति बढ़ गई है. लेकिन अब जब हमें ये पता चलता है कि ये कलयुग के बाद फिर
0: देयर इज दैट होप, यू नो,
1: इट्स नॉट अ होप, इट्स अ रियलिटी. सो इट्स जस्ट दैट वी प्रिपेयर फॉर दैट रियलिटी. अगर हमें रात के बाद सुबह नहीं है ये ना पता हो, तो हमारी रात कैसे बीतेगी? It will feel कि ओ माई लाइफ विल बी लाइक दिस, यू नो. बट हमें पता है कि रात के बाद सुबह है, तो हम लोग उस रात को बहुत स्मूथली क्रॉस कर लेते हैं और सुबह की अपनी तैयारी कर लेते हैं. लेकिन सुबह की तैयारी हम करते हैं ना वो नो ग्लोबल लेवल. सुबह आने वाली है, अब हमें उसकी क्या तैयारी करनी है?
0: वंडरफुल. एक्चुअली यू नो, माइंड सेट चेंज करने की बात है सबसे पहले. ये कहने के बजाय कि सब कुछ खत्म होने वाला है या घोर कलयुग है, वी हैव टू से आवरसेल्व्स सुबह आने वाली है. इट मेक्स ऑल द डिफरेंस.
1: इट कांट गो ऑन इन एनी वेज इफ यू लुक एट एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, पॉपुलेशन, रिसोर्सेज, एनवायरमेंट, इट जस्ट कांट गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर. कब तक? कब तक ये चल सकता है? कहीं ना कहीं तो एक जंप आएगा ही, कहीं ना कहीं तो वो परिवर्तन आएगा. तो जब हम सत्युग में थे या गोल्डन एज में थे, तो सोल वॉज एब्सोल्युटली फुल, क्योंकि वो अपने घर से मैं आत्मा आई, तो मैं आत्मा 100% प्योर. तो दैट इज दैट पोटेंशियल स्टेट, बिल्कुल फुल, हाईएस्ट एनर्जी, सोल कॉन्शियसनेस, नेचुरल. जो चीज आज एक क्षण के लिए भी याद नहीं रहती है कि मैं आत्मा हूं, वो उस समय में 100% नेचुरल थी. जैसे आज मैं शरीर हूँ, ये 100% नेचुरल लगता है, एफर्ट नहीं करना पड़ता कि मैं ये हूँ. उस टाइम मैं आत्मा हूँ, इसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता था. इट वॉज नेचुरल कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कर रही हूँ. लेकिन फिर कर्म करते गए, एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, दूसरा छोड़ा, तो धीरे धीरे क्या हुआ, दैट हाइएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मूव्ड फ्रॉम एन ऑर्डर्ड स्टेट slowly, but it was a slow process. It was a slow process, gradual, and we have enjoyed that journey. We have. जो आज कई बार लोग पूछते हैं कि फिर ये सृष्टि बनी क्यों? You know, इतना दुख है, इतनी अशांति है. लेकिन कितना समय?
0: अशांति तो अब आई है.
1: अब आई है. ऐसे तो हम कोई भी कर्म करने जाते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं, towards the end of the day हम थक जाते हैं. हम कोई गेम भी खेलते हैं. Towards the end of the game, we get tired, but we accept that. हम समझ लेते हैं कि चार घंटे अगर खेलेंगे तो आखिरी के 15-20 मिनट तो थक जाएंगे. और फिर जब थक जाते हैं, फिर हम रेस्ट करते हैं और फिर हम अगले दिन गेम फिर खेलते हैं. लेकिन अगर हम सिर्फ उस 15 मिनट को देखें कि ओ ये गेम खेलने से तो थकेंगे, तो विल बी स्टॉप प्लेइंग द गेम?
0: नो, वी विल नॉट.
1: 3 hours 45 minutes was good game. 15 minutes pain. Can't give up the game.
0: But it pains actually, those 15 minutes. So that's the pain we're feeling now.
1: That's the pain. And why are we feeling that pain? Because now we are tired. You know, the soul has really reached its stage where hame ye yaad hi nahi ki main atma hu. To wo energy level bilkul jaise finish nahi, lekin it's reached its lowest point. Lekin now we have the opportunity, because the highest source of energy, Paramatma, has intervened into the system. So all that I have to do is now
0: connect
1: to him. And I will again move from the chaotic stage to the ordered stage.
0: Okay, before we get into that, how things will transform, how I'll transform, is like, I want to ask you a question. ये जो हम पूरे चार युगों की बात करते आ रहे हैं, ये कई बार हो चुके हैं. That's what the question is, you know.
1: Cycle.
0: तो इसका मतलब कई बार हम
1: जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात कई बार हो चुकी है.
0: कई दिनों में हो चुके, कई बार हो चुके,
1: कई बार हो चुके हैं। आप गिनती कर सकते हैं कितनी बार हुई है। साइकिल है तो अगेन, अगर वो लीनियर होता तब आप कह सकते थे कब शुरू हुआ था, और अगर कभी शुरू हुआ था तो फिर फिनिश भी होगा, लेकिन साइकिल।
0: तो हम कई बार ये गेम खेलते आ रहे हैं,
1: एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इजी, क्योंकि कोई चीज अगर आपने कई बार की है देन
0: आपको पता है कि आगे भी क्या।
1: इट्स वेरी इजी। सी, जब हमें शिव बाबा आकर ये ज्ञान देते हैं तो हम आत्माएं उस समय बिल्कुल कमजोर होती हैं, एकदम थकी हुई जैसे, यू नो, टायर्ड एट द एंड ऑफ द गेम। एंड परमात्मा आकर हमें बताते हैं कि हे आत्माएं, तुम 100% प्योर थे, यू नो, तुम्हें अब फिर से 100% सोल कॉन्शियस बनना है। वेरी डिफिकल्ट इट सीम्स, वेरी वेरी डिफिकल्ट, कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो हाउ इज इट पॉसिबल कि एकदम 100% बॉडी कॉन्शियसनेस से 100% सोल कॉन्शियसनेस पे जाना है, एक ऐसी स्थिति तक पहुंचना है जब यू नो पीस एंड प्योरिटी एंड लव इज योर नेचुरल। पहली बार सुनने में इट साउंड्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जब हमें समय का ज्ञान मिलता है उससे सारा परसेप्शन चेंज हो जाता है। क्यों? आप आत्मा ही वैसे थे, आप थे 100% प्योर, आप वो 100% प्योरिटी से अब एकदम इम्प्योर वाले लेवल पर आए, लेकिन थे आप, और फिर आप इस इम्प्योरिटी के लेवल से फिर से प्योरिटी के लेवल पे जाएंगे।
0: आप ही जाओगे,
1: आप ही जाओगे, और आपने ये जंप पहले भी किया है, क्योंकि ये साइकिल पहले भी घूमा है। तो आप थे, आपने पहले भी ये किया है, जो चीज आपने इतनी बार की है वो अब आप एक बार फिर करने वाले हो, देन इट बिकम्स मच मच इजियर। यू रियलाइज आई वॉज दैट, यू नो, somebody has to motivate, they'll say you've done it before, so now you can do it again. But if somebody asks me to do something which I've never done before, it'll be little challenging. But if I've done it so many times before, then it's simple. तो इसलिए समय को पहचानने से सब कुछ बहुत सिंपल होने लगता है, क्योंकि मैं थी क्लीन, मैं गंदी हो गई हूँ, मुझे फिर से क्लीन होना है, बट आई वॉज क्लीन।
0: कई बार ऐसा लगता है कि ये सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूँ, मैंने ये देखा हुआ है पहली बार। इनफैक्ट बहुत से हमारे ऑडियंस, हमारे पास इस तरह की अगर हम किताबें भी उठाकर देखें तो बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं कि ये सिचुएशन मैंने पहले देखी हुई है, ये मेरे साथ हो चुका है, ये जगह पे मैं आया हुआ हूँ।
1: यस, ये मेजोरिटी मेरे को लगता है हम सबके साथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक पर्टिकुलर सीन में होते हैं, एक दृश्य में होते हैं, और हमें लगता है ऐसे के ऐसे मैंने इस दृश्य को पहले देखा है, यही के यही लोग थे, यही का यही बिल्कुल ऐसा हो रहा था, बट इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव सीन। तो ये व्हाट इज दिस, अगर वो सीन पहले कभी हुआ ही नहीं है तो हाउ कैन आई फील कि मैंने वो देखा है। लेकिन अब हमें समझ में आता है, बिकॉज द साइकिल इज अ रेपिटेशन, इट इज मूविंग एंड मूव्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो जो सीन आज हमारे साथ हो रहा है ये पहले भी
0: हो चुका है,
1: जो हो चुका है वो यहाँ स्टोर्ड है, और इसीलिए जो चीज यहाँ स्टोर्ड है जब वो फिर से होती है, और अगर वो हम क्लैरिटी से अपनी पास्ट मेमोरी को ले आए तो हमें लगता है हाँ यही का यही सीन हो चुका है। कई बार हम कहते हैं कि मुझे पहले ही पता था कि आज ये होने वाला है, यू नो, इंट्यूशन। इंट्यूशन भी कैसे होता है? इंट्यूशन के पीछे भी यही लॉजिक है, क्योंकि आज जो होने वाला है वो पहले हो चुका है, बिकॉज इट्स अ साइकिल। तो इंट्यूशन भी इसी पर आधारित है, क्योंकि आज जो मेरा कल, जो मेरा फ्यूचर है, इट्स आई एम एट दिस पॉइंट इन द साइकिल एंड दिस पॉइंट इज माई फ्यूचर, इट्स माई टुमोरो। बट इफ आई लुक एट इट फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द साइकिल, देन दिस पॉइंट इज ऑल्सो माई पास्ट।
0: ओके,
1: सी, लुक एट इट ऑन अ साइकिल, हियर आई एम टुडे, दिस इज माई टुमोरो, but then if I look at it from here, this is my yesterday. So that's why, because it's my yesterday, to yesterday to yaad hai,
0: it's somewhere there in my mind,
1: yahan hai. To jitna jitna mind ko silent karte jayenge to wo yesterday yaad aata jayega, aur jitna yesterday yaad aayega tomorrow pata lagta jayega.
0: Now the time is ki we have to become proactive.
1: Absolutely, because ab hame bahut kuch karna hai. Now is not the time ki we can just sit back and say ki jo hona hai wo, kyunki bahar ka parivartan jitni teevra gati se hoga usse zyada teevra gati se hame apna antarik parivartan chahiye, kyunki chaos bahar badhega. यू नो ऑर्डर्ड टू क्योटिक स्टेज. तो जो बाह्य चीजें हैं वो अभी तक ऑर्डर्ड से क्योटिक स्टेज में जा रहे हैं और अभी भी और क्योटिक स्टेज में
0: जाने वाले
1: हैं. जो ग्लोबल वार्मिंग की हमने बात की या न्यूक्लियर वट एवर एवरीथिंग, तो वो जो क्योटिक स्टेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है. वी विल नॉट बी एबल टू स्टॉप दैट राइट नाउ. द इनर स्टेज, क्योंकि जब इनर स्टेज क्योटिक स्टेज से ऑर्डर्ड स्टेज में आएगी तब बाहर वाली स्थिति
0: चेंज हो जाएगी,
1: फिर से ऑर्डर्ड स्टेट में आएगी. लेकिन पहले जिम्मेवारी आत्मा पर.
0: क्योंकि अगर हम अपनी जर्नी भी देखें तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी या क्योटिक स्टेज में हम इंटरनली आए थे बेसिकली, यू नो
1: वो पर्यावरण हाँ एकदम अच्छा था. तो सारा कुछ पहले आत्मा में होता है, फिर उसका प्रभाव प्रकृति पर होता है. आत्मा प्योर, प्रकृति प्योर. आत्मा धीरे धीरे इम्प्योर होती गई, उसके फलस्वरूप धीरे धीरे प्रकृति इम्प्योर हो गई. अब अगर आत्मा वेट करे कि जब बाहर सब ठीक हो जाएगा तब मैं ठीक हो जाऊं, इट विल नॉट हैपन. रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले हम पर है कि मुझे अब फिर से वो 100% प्योरिटी पे जाना है, प्रकृति फिर अपने आप ठीक हो जाएगी. तो इसीलिए अभी का जो समय है, वी आर एट द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इन द वर्ल्ड साइकिल. क्योंकि अभी तक जो था बैटरी डिस्चार्ज होने का समय था, नेचुरल है, उसमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता. बैटरी चार्ज हुई हुई थी, यूज किया, धीरे धीरे डिस्चार्ज हो गई. लेकिन डिस्चार्ज से चार्ज
0: उसमें टाइम लगता है, और जब लास्ट
1: टाइम नहीं उसमें थोड़ा सा एफर्ट
0: भी करना पड़ता है, और जब लास्ट से एंड खत्म होती है तो एकदम से होती है.
1: हाँ, बिकॉज इसीलिए हमें पता चल रहा है कि अभी जो डिक्लाइन है ऑन मॉरल social, physical, mental, spiritual level, that decline is very fast. You know, mobile भी चार्ज करके चलते हैं तो सारा दिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है, लेकिन एंड की दो लाइन्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती है. तो अभी हम वो ही समय पर पहुंच रहे हैं जो डिक्लाइन बहुत फास्ट होगा. तो इसलिए वो फिनिश तो होगा नहीं, लेकिन उससे पहले अपने आप को फिर से चार्ज करना पड़ेगा. और चार्ज से डिस्चार्ज हम अपने आप हो गए थे, इसलिए परमात्मा का उसमें कोई रोल नहीं था. लेकिन अब डिस्चार्ज से चार्ज, वो जो एक जंप है, ये बहुत हाई जंप है, और ये हम आत्मा अपने आप नहीं कर सकती है. एंड तब परमात्मा का इस सृष्टि पर अवतरण होता है. एंड ये अब का जो समय है जब आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होता है, कनेक्शन होता है, या हम कहें आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है. और इसीलिए इस समय को हम संगम युग कहते हैं. अब हम कलयुग में वैसे तो हैं, जब तक हमें अपना और परमात्मा का परिचय नहीं, लेकिन जब हमें वो परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, अब हमारी जीवन कलयुग वाली नहीं, अब हम वो संगम के समय पर हैं. तो दिस पीरियड इज कॉल्ड द कॉन्फ्लुएंस एज. संगम किसका संगम? आत्मा और परमात्मा का संगम.
0: स्ट्रेंथन्ड एक्चुअली,
1: यस. एंड दैट्स व्हाई दिस एज इज कॉल्ड द डायमंड एज, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल एज ऑफ द होल साइकिल. क्योंकि आत्मा का अपने पिता के साथ संगम है इस समय. सारे साइकिल में तो हम डिस्चार्ज होते आए, नो बिग डील, नेचुरल. लेकिन जब चार्ज होने का समय है, दैट इज अ बिग जंप फॉर द सोल. तो दिस एज इज द डायमंड एज. तो हम सब आत्माएं अभी एक मोस्ट ब्यूटिफुल पीरियड से गुजर रहे हैं ऑलरेडी. जो आने वाला समय है वो तो सुंदर है ही है, दैट इज द गोल्डन एज. लेकिन अभी जो समय चल रहा है जहां आत्मा अपने पिता से फिर संबंध जोड़ती है, ये संगम युग है.
0: मोस्ट एक्साइटिंग
1: वेयर यू कैन सी See what is the difference between golden age and now. Golden age में सब कुछ ही अच्छा है, you know. तो आपको अच्छाई का भी experience कब होता है? जब आपने अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को साथ साथ देखा हो. सत्युग में आप हमें feel भी नहीं होगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, because होगा ही अच्छा.
0: Natural.
1: It will be natural. सुख क्या होता है वो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलेगा, क्योंकि दुख क्या होता है उसकी अनुभूति नहीं है. लेकिन अभी का जो समय है, जहां अभी हमारा जीवन दुखी है, अशांत है, परेशान है, और इसमें परमात्मा से संबंध जोड़ के हम उसी कलयुगी समय में रहते हुए जहां चारों तरफ त्राही है, अगर हम अपने जीवन को वो सुखी, पवित्र और शांत स्वरूप बना सकते हैं तब वो जीवन कैसे होगी. एंड दैट्स वाई इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल पीरियड. इट्स दैट्स वाई यू नो वी आर नॉट वेटिंग फॉर सत्युग टू कम. नो वी आर नॉट, बिकॉज दिस पीरियड इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट, बिकॉज माई लाइफ बिकम्स सो ब्यूटिफुल राइट नाउ. तो ये वो संगम युग है, कलयुग से सत्युग, इन दोनों का भी संगम है अभी, और आत्मा और परमात्मा का भी संगम है. सो दिस इज द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो घड़ी जो अब है वो बस 12 बजने को कुछ ही मिनट पर, कुछ ही मिनट भी नहीं कहेंगे अब तो, आकर पहुंची है. एंड इट हैज जस्ट टू मूव एंड द साइकिल हैज टू बिगिन ऑल ओवर अगेन. तो दिस इज दैट पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जहां from 100%, not 100%, but very impure, we will jump to a stage of 100% pure. और उसको करने का तरीका कैसे होगा?
0: What I can feel is a meditation.
1: Yeah.
0: The way I link, because that, see, if we look at, मुझे लगता भी है कि सारे दर्शक जो हमारे देख भी रहे हैं प्रोग्राम, हमारे इस परिवार का हिस्सा है, कि अब दिन का सबसे खूबसूरत वक्त वो हो गया है जब हम वो मेडिटेशन में बैठे होते हैं. You know, it has, maybe it's 10 minutes, maybe it's 15 minutes, maybe it's half an hour. But that's the period you actually look forward
1: right.
0: to. And if you miss it, you don't like it. You want it to be there.
1: Sahi. तो अभी के ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में दो चीजें होंगी. मेडिटेशन, मेडिटेशन से क्या होगा कि आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, they will re-emerge. वो कॉन्शियसनेस फिर से आती जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस जो अब आएगी वो ही हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर देगी. सत्युग में जाने के लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए? यू नो, जो हम सोल कॉन्शियसनेस, बिकॉज द सोल ओवर देयर वॉज इन 100% सोल कॉन्शियसनेस. अब परमात्मा आकर हमें वापस उस सोल कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जा रहे हैं. तो जहां वो कॉन्शियसनेस अभी हमने अपने अंदर जागृत की, तो वही अवेयरनेस कि हम क्या थे वो फिर से जागृत होने लगेगी. पीस, प्योरिटी, लव, पावर, जो कि हमारी ओरिजिनल संस्कार थे, लेकिन इतने सब युगों के बाद वो स्टैक जो था संस्कार का, तो ये सारे संस्कार एकदम नीचे चले गए थे स्टैक में. तो मेडिटेशन क्या करेगा? नीचे से इनको एकदम ऊपर के लेयर में ले आ जाएगा, और हमें वो अवस्था में ले आएगा जो हम थे और जो अब हम बनेंगे घर जाने से पहले. क्योंकि द ट्रांसफॉर्मेशन विल बी क्वाइट केओटिक आउटसाइड. You know, the outside cleaning process will take place. Transformation क्या होती है? एक तरफ पुराना घर टूटता है और दूसरी तरफ नया घर बनता है. तो एक तरफ कलयुग का परिवर्तन होगा, सृष्टि का परिवर्तन होगा. जो हमने देखा ग्लोबल वार्मिंग, स्नो मेल्टिंग, वी से 20 फीट द सी लेवल विल राइज, ऑल दिस विल हैपन.
0: इस प्रलय की बात की जाती है.
1: हाँ, तो ऑल दिस विल हैपन बिकॉज ये सारे ही तो विधि है जिससे सृष्टि की सफाई होगी. यू नो, पर्यावरण की सफाई होनी है. सत्योगी दुनिया कैसी होगी? एनवायरमेंट विल बी 100% प्योर. तो वो कब होगा? जब ये सफाई होगी. तो वी विल गो थ्रू दैट लिटिल क्रिटिकल पीरियड, लेकिन जो अंदर से स्टेबल होंगे उनके लिए वो पीरियड भी कब आकर निकल जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा.
0: आई थिंक वो ऑलरेडी चार्ज्ड और ऑलरेडी उस अवेयरनेस में रहने शुरू.
1: एब्सोल्युटली. तो इसलिए इंटरनली हम अपने आप को उतना पावरफुल, उतना प्योर बनाएंगे. दो काम हम अभी कर रहे हैं. एक, अपने ओरिजिनल संस्कार्स को फिर से री इमर्ज कर रहे हैं, और ये ओरिजिनल संस्कार्स मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार होंगे जिनको लेकर मैं अपने घर जाऊंगी परमधाम, और फिर से वो साइकिल के बिगिनिंग में फिर आ जाऊंगे. एंड दूसरा, जितने मैंने पीछे कॉर्पोरेट से बहुत सारे जो विक्रम किए हैं जिसका हिसाब किताब हमें अभी चुक तो करना पड़ता है, तो वो भी हम योग से चुक तो करते हैं. जैसे कार्मिक फिलोसफी की जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इज देयर नो वे कि हम इसको सेटल कर सके. तो जितना अभी डिक्लाइन हो रहा है तो हमें भोगना की फीलिंग ज्यादा आ रही है ना. सफरिंग हैज इंक्रीज्ड. तो ये सफरिंग को कम करने का दो ही तरीका है, कम या फिनिश करना है हमें, या तो भोग के या योग से. और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि सब आत्माओं को अपने घर जाना है और सब आत्माओं को सारा ये अकाउंट जो यहाँ क्रिएट किया था वो सेटल करके जाना है, प्योरिफाई होकर जाना है. तो प्योरिफाई होने का दो तरीका है, या तो भोग के जिसको हम कहते हैं सजा भोग के, तो इसका आज दिन तक हम सुनते थे कि ऊपर जाएंगे तो सजा मिलेगी, तो सजा कहीं ऊपर नहीं, वो सारी सजाएं हमें यही मिलती हैं। हर पल जब हम दुखी होते हैं उससे बड़ी सजा और कोई नहीं होती है, दर्द में होते हैं वो ही हमारी सजा है। तो वो सारा जो अकाउंट हमें सेटल करना है, या तो दुख दर्द यहाँ भोग के या फिर योग से। तो जितना हम योग करेंगे अभी परमात्मा से वो कनेक्शन जोड़ेंगे, पुराना हिसाब किताब चुक तो करते जाएंगे, ओरिजिनल संस्कार इमर्ज करते जाएंगे, उतना दुख और दर्द की फीलिंग
0: कम होती जाएगी।
1: एंड जितना आपकी सफरिंग कम होती गई मतलब उतने आपके अकाउंट्स
0: सेटल होते गए।
1: क्योंकि जितना टाइम क्रिटिकल और आता जाएगा सफरिंग और भी बढ़ती जाएगी। तो जितना हम अपनी तैयारी अभी कर लेते हैं परमात्मा के साथ संबंध जोड़ के वो प्योरिफिकेशन का प्रोसेस बिगिन करते हैं, तो बाहर सफाई चल रही होगी लेकिन अंदर की तैयारी
0: जो है वो पूरी
1: उससे पहले हो जाएगी। सो वील बी एबल टू क्रॉस दैट टाइम वेरी ब्यूटिफुली, एंड इवन नाउ लाइफ विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी ब्यूटिफुल।
0: ये जो पूरी हमारी आज बातचीत रही ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले वक्त की तैयारी, सुबह की तैयारी हमें अभी करनी है, चाहे घोर कालिमा है लेकिन इसी रात में हम तैयारी कर सकते हैं। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। मानते हैं कि क्योस है, मानते हैं कि त्राही त्राही मची है, लेकिन जैसे हमने अपने अंदर, हमने पहले भी ये बात की थी कि बदलाव अपने ही अंदर आएगा, अब जब हमने इस पूरे चक्र को समझ लिया है, काल चक्र जिसे कहा जाता है, समय का चक्र, समय की सच्चाई, तो फिर आने वाला जो स्वर्ण युग है, जो गोल्डन एरा है, वो इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी जो युग है वो भी बहुत सुंदर है, क्योंकि यहाँ आत्मा और परमात्मा का वो मिलन हो रहा है जो किसी और युग में नहीं हुआ है। तो हम इस डायमंड युग को, इस संगम युग को भी एंजॉय कर सकते हैं, आने वाला जो भी क्यों सामने है उसकी तैयारी कर सकते हैं, और फिर उस स्वर्ण युग या गोल्डन एज की इमेजिनेशन कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जिसका जवाब आप तलाश रहे हैं, आपका स्वागत है। आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं।
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।
0: हमने स्वयं को भी पहचान लिया, सारी जानकारी हमें मिल गई है, समय चक्र भी पता चल गया, लेकिन परमात्मा जिनके बारे में हम ये कह रहे हैं कि शिव बाबा आ चुके हैं और स्वयं उस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, उस युग में हमें लेकर जाएंगे, तो कहाँ है वो, उन्हें तलाशना भी बाकी है। तो अगली कड़ी में हम सीधा संपर्क जोड़ेंगे शिव बाबा से। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: बरसेगा
1: सावेरा
0: झूमे झूमिया
2: कृष्णा।
1: ओ आगे वीरा भाभी गए।
3: सत श्री अकाल अफसरो।
1: सत श्री अकाल, किवें हो? बड़ा दबका थोड़ा।
0: बैट्समैन बनोगे बॉलर बनोगे की पसंद आ थोनू ज्यादा?
2: तरसेम
3: जसड़ क्रिकेट थोड़ी खेड़दा।
0: हाँ, ये गल ठीक है भाई।
2: सारे कुछ मेरा डिफरेंट आ।
3: की?
2: सारे कुछ मेरा डिफरेंट आ।
3: अच्छा, सारा कुछ ताड़ा डिफरेंट आ।
0: मैं दस दाना, मैं करियर बना दाना। 17-18 दी उम्र च इंटरनेशनल च चल जान, 30-32 तक खेड लैन, सही के नहीं?
3: हाँ।
0: फिर बाद चो एक्टर बन जान,
3: बस सिंगर बन जान।
0: हाँ, सिंगर बन जान, सिंगर एक्टर बन जान, सही के नहीं?
3: ये भी ठीक
2: है। नहीं, मैं नहीं सिंगर बनना।
3: सिंगर नहीं बनना, उन्हें बनना वा क्रिकेटर।
0: क्रिकेटर
3: चो ठीक है,
0: क्रिकेटर ही बनो यार।
3: लग जू पता फिर इदा गल गल बननी
0: पै गया टाइम पै गया
3: तू। अच्छा। आ मेरा मेरे नाल खेड के वेह मेरा वीर, तू जरा किलो किलो मटरी दी ला हां शर्त मेरे ना।
0: ओ बल्ले, क्या बात है,
3: किलो मटरी दी शर्त ही फिर
2: करके जा, मैं सोखा रन आउट ही करा दूं।
3: किलो मटरी दी शर्त लौनी
0: डन हो गया।
3: ठीक है,
0: चलो मैं नोट कर लिया, मैं
3: मटरी लेके आई नाल ते अपन शर्त लावांगे।
2: ठीक
3: है, चलो फिर वेखी जाऊं।
2: मैं मटरी बाद च देऊं कि अंकल दी कीवरी चोरी भी कर।
3: रिश्ता सब तो प्यारा रखड़ी आ गई वे, सरदारा रखड़ी आ गई वे, आ गई वे सरदारा रखड़ी आ गई वे, बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। ठंड घट गई थोड़ी जी नाहत है ना।
2: हां जी,
3: हां हुण थोड़ा जिहा जिद्दां छेती इदां नहीं लगदा भी छेती बल्ब जगाते रब ने। बारियां खुलियां छड़ के सो जांदा।
0: अच्छा, ये कारण
2: है? बहुत छेती उठा जांदे ने
3: पापा। हां, गुड है ना फिर, जेडे छेती उठिए फिर बड़े काम साडे सही सही आपां टाइम ना
0: छेती छेती हो जांदे, फिर बंदा चिल ज्यादा कर सकदा पूरा दिन।
3: तुही भी जदों पापा सुते होणगे ना तुही भी उठा दिओ टाइम नाल। अच्छा, फिर आना। ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, इन्ना क माफ कर दे, इन्ना क माफ कर दे करो, है ना?
0: आप ट्रेनिंग दोबारा कराने,
3: जेड़े बंदे और जेड़े बंदे दे नाल अंकल ला दो ना, उमड़ के इन्ना को भुलन लग।
0: खराब
3: है कुड़ी
0: ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀਰੇ
3: ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਰਾ ਬੁਰਾ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਦੀਦੀ ਖਵਾਉਣਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੀ ਜੱਜਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਫਿਰ ਅੱਜ
2: ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੋਲੀ
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰੇ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਕਲੀ
3: ਪਾਵਾਂਗੇ ਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ
2: ਨੀ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿੱਕਲੀ ਪਾਵਾਂਗੇ

0: पापा दी चिट्ठी कदी टूटी मैं अंदर सी मैं बाहर डिग गई है ना तो मेरे पापा मेरे पीछे भज गए उन्हें पता नहीं सी मैं किथे होगी
1: अच्छा ओ फिर
0: मैं गड्डी दे विच डोर मेरा खुला है ना बंद हो गया ते ओ टूट गया ते मैं आए रोल होके बाहर डिग गई
1: फिर उह रोके सीस को और फिर परे नू भज गई फिर पापा ने भज के ते सीस नू लभ लिया ते फिर नेक्स्ट डे पापा वड्डी गड्डी लेके आए
0: हां जी जेडी कदे भी टूट नहीं सकदी
1: हां जेडी सब तो स्ट्रांग गड्डी फिर ओदे ते पापा लेके गए सीस को नू ते फिर ओना ने विच गाना लाया केड़ा
2: केड़ा
1: ना ना ना ना
3: नारे नारे नारे ना ना ना नारे नारे ना
1: ए टूट नहीं सकदी ओ ओ ओ टूट नहीं सकदी ए गड्डी कदे टूट नहीं सकदी
2: नारे
0: नारे
1: ना ना ना ना ना
2: ए बोली नाल ए बोली अज सपने च निकल गई है वेरी गुड
0: मैं बोली जाड़ी
1: हां सुनाओ सुनाओ
2: सुनाओ सुनाओ सुनाओ
0: माते मासी गला कर दिया माते मासी गला कर दिया एक मिनट वीना फोन छड़ दिया एक मिनट वीना फोन छड़ दिया कर दी चुग कर दिया चुगड़ी वारो वारी माते मासी दी मत फोन ले

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

हाय ऑस्ट्रेलिया, हाय मेलबर्न, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM.

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो PR तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस, आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 02-9063-1618, हुन पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: चल दोस्तों, मैं हां थोड़ा अपना प्रीतरपाल ते तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी 1674 AM।

0: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: कुछ गल्लां कहणियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां ने। हाय नी, इन्नो सोहना मुंडा, ओह वी गूंगा है। इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है। मुंडे नूं चाहीदी है सारी रात फोन ते गल्लां करन वाली कुड़ी। तू बोल नहीं सकदी, ओने नहीं आउणा तेरे पिच्छे।
2: लव इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी, रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल भावे ना बोल, रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन।
1: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर, सिद्धे आओ आई एम ई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण, तुहाडी लोड़ नूं 9 वरियां तों स्किल्ड वीजा, 186, 189, 190, 482 ते 491। स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तों पीआर तक, हर इमिग्रेशन प्रोसेस लई एक्सपर्ट गाइडेंस अज ही परोसे नाल संपर्क करो। आई एम ई एडवाइजर, कॉल 02-906-316-18, हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच वी। आई एम ई एडवाइजर।

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: जिप्पी म्यूजिक अते म्यूजिक टाइम प्रोडक्शंस पेश करते ने पंजाबी फिल्म जुदा अधूरे प्यार दी पूरी कहानी।
1: मेरी जिंदगी चोन वाली पहली कुड़ी भी तू ते आखरी भी तू।
0: गुलाब सिद्धू अते जैस्मीन पसीन दी अदाकारी वेखो गिल रौंता दी लिखी अते सिमरजीत सिंह वल्लों डायरेक्ट कीती पंजाबी फिल्म जुदा। रिलीज होवेगी 21 अगस्त नु सिर्फ सिनेमा घरों विच।
2: एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ कनेक्ट एफएम। यूज ऑफ दिस एक्सक्लूसिव कंटेंट बाय एनीवन अदर देन कनेक्ट एफएम विल रिजल्ट इन लीगल एक्शन।
3: ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर। अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491। स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जां स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ले एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर। कॉल 02-9063-1618। हुण पैरामेटा सिडनी अते न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मैनूं पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग, वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
4: मेरा नाम है रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे, लव यू ऑल, भावनाओं को समझो। दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हाँ जी पर, रेडियो हाँ जी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हाँ जी सुनना होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षर ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: रिदम बॉयज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बोल पावे ना बोल,
3: प्यार नु सुनन ली कन्ना दी नी दिल दी लोड़ हुंदी,
2: कुछ गल्लां कहनियां नहीं पैंदियां, बस महसूस करनियां पैंदियां नी।
3: एहो गल ते मैं हुणे अपनी जुबान वड के हो जाना।
2: इस बार गल सिर्फ बोलन दी नहीं, दिल दी सुनन दी है।
4: जिंदगी किवें कटांगी, मैं नहीं रह सकती ओदे बिना, मैनू ओ चाहिदा।
2: रिलीजिंग वर्ल्ड वाइड 4 सितंबर, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राकेश धवन। लव, इमोशंस अदे रिलेशनशिप्स दी कहानी, बोल पावे ना बोल।

0: खास करके पहला आपां गल करदे ओए कृष्णा जी ने आ पाया हुण कृष्णा जी
1: नो वन के
0: जो मर्जी पाया
1: वैसे वैसे गल दस जे तुसी बहुत हाई एंड फैशन देख लो वधिया है ना बहुत नामात्र ब्रांडिंग यूज करते मतलब इट इज
0: यार आजकल ते यही चल पिया वा पी जिन्ना निक्का लोगो होगा ओनी चीज चलनी है जी अखा च वजूगा ते नोबडी गाना बाय दैट
1: फिर वो लगता ना ज्योति चौंक ते 150
0: दो एक वखरा विषय बन जाते
1: 150
0: होना भी ये आप आंदे करांदे आ वे ब्रांड भी यार चुको हाडा ओदा ही सही मशहूरी कराओ
1: पर एक आप ब्रांडा की गल की कई लोगों की जो मैं तेन किस्सा सुना तू देख बैक हूँ दूसरे पास चलिए बनाने वाले है ना कहानी है 1940 की ठीक है 38-40 टाइप की है जर्मन की
0: जर्मनी
1: जर्मन के अंदर वर्ल्ड वॉर टू भी साइड से हल्का हल्का चलता
0: पाया
1: ठीक है बहुत छोटा जहा एक शहर है बहुत साइड से कोने जाते जर्मनी से उ एक भरावान ने ना दो भरावान ने रल के फैक्ट्री खोली बूट बनाने उन्हें शूज बनाए काफी बनाए बहुत मशहूर है वो इन्नी मशहूर हो गई फैक्ट्री वो वाली उन्होंने कि सारा शहर का आदमी ते औरत जिहड़ा काम कर सकता सीगा 80-90% उस फैक्ट्री च काम करना शुरू हो गया ठीक है बहुत वधिया चलता वैसे हुण जी इधर ये हार गए जर्मनी वाले दोनों का माड़ा रसूख हो गया ना छोटे शहर कोई तगड़ा लाला हो तो ना एमएलए एमपी लेवल दे तो लोग जानते होंगे।